0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

काश मैं तेरे हाथ हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती तू। पिनाज मसानी को सुनने के बाद अब बारी आती है अशोक खोसला की। इनकी आवाज में सुनिए, तुम इतनी हसीन हो, इतनी जवान हो।

तरह समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। तेरी यादों की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती है, तेरे गम में सुलगता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। न जाने हो गया हूं इस कदर हसास मैं कब से, किसी से बात करता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। लीजिए अब सुनिए आबिदा परवीन को।

उसके हाथों से जो खुशबुए हिना आती है, उसके हाथों से जो खुशबुए हिना आती है, ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आती है। ना कभी कोई करे तुझसे तेरे जैसा सलूक, हाथ उठते ही यही लब पे दुआ आती है। अब शौक से सुनिए गुलाम अली को।

मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है। हर एक शख्स चलेगा हमारी राहों पर, हर एक शख्स चलेगा हमारी राहों पर, मोहब्बतों में हमें वो मिसाल होना है।

हरिक्षब मेरी ताजा अजाब में गुजरी, हरिक्षब मेरी ताजा अजाब में गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी। मैं एक फूल हूं वो मुझको रख के भूल गया, मैं एक फूल हूं वो मुझको रख के भूल गया, तमाम उम्र उसी की किताब में गुजरी।